नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता, देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। ना देखे वो गोरा काला ना देसी परदेसी, अरे जब चाहे सोने से भर दे फटे चाट की खेती, जिस पर उसको प्यारा जाता उसको जेबे झाड़ के देता, देने वाला हा हा हा।